ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। जापान की अदालत उज़्मा ने यूनिफिकेशन चर्च के नाम से मशहूर मजहबी ग्रुप की एक खसूसी अपील को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ग्रुप की तहलील के एक मातहत अदालत के फैसले को कलदम करने की इस्तदा की गई थी। टोक्यो हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में ग्रुप की मजहबी कॉरपोरेशन की हैसियत को खत्म करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि ग्रुप के इबादत

0: गुजारों से बड़े अतियात मांगने और उनकी रूहानी सेहत के बारे में खौफ का फायदा उठाकर उन्हें महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर करने के अमल से बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा माली नुकसान और जहनी अजियत पहुंची। ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक खसूसी अपील दायर की जिसमें इस्तदलाल था कि हाई कोर्ट का फैसला मजहबी सरगर्मियों और तंजीम साजी के हक की आज़ादियों की खिलाफ वर्जी करता है और इसलिए आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल तक अपील खारिज करने का फैसला कर लिया। फैसले ने हाई कोर्ट के हुक्म को हतमी करार दे दिया। 2022 में साबिक जापानी वजीर आजम आबे शिंजो की हलाकत के बाद इस ग्रुप के तौर तरीकों ने बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल की। जुर्म का एतराफ करने वाले शख्स ने बताया कि उसकी वालदा के इस ग्रुप में शामिल होने और भारी अतियात देने के बाद उसके खानदान के हालात खराब तर हो गए थे। उसने कहा कि आबे शिंजो को इसलिए निशाना बनाया कि उसने देखा था कि साबिक वजीर आजम इस ग्रुप को सियासत से जोड़ने वाली मरकजी शख्सियत थे। ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बयान जारी किया जिसमें उसकी खसूसी अपील खारिज किए जाने को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि उसके इबादत गुजारों और उनके अहले खाना के हकूक की मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। शुमाली जापान के ओमोरी प्रिफेक्चर में प्राइमरी के तुलबा ने एक फ्लोट के लिए पेंटिंग्स तैयार की हैं। यह फ्लोट गर्मियों के एक मशहूर फेस्टिवल में हिरोसाकी शहर से गुजरेगा। हर साल शहर के जितोकू प्राइमरी स्कूल के बच्चे अगस्त में होने वाले सालाना हिरोसाकी नेपुता फेस्टिवल के लिए फ्लोट बनाते हैं। इस रवायत का मकसद मकामी कम्युनिटी के लिए उनके प्यार और दिलचस्पी को गहरा करना है। इस काम का आगाज पीर के रोज हुआ। चौथी से छठी जमात के बच्चे मंगल को स्कूल के जिमनेजियम में पेंटिंग्स को खत्मी शक्ल देने के लिए जमा हुए। इन पेंटिंग्स से फ्लोट के अगले और पिछले हिस्सों को सजाया जाएगा। बच्चों ने एक मकामी फ्लोट पेंटर की हदायत पर अमल करते हुए पेंटिंग्स को स्याही से बनाया और एहतियात से नीले, नारंगी और दीगर रंगों को इसमें शामिल किया। बच्चे जुलाई के अवाखिर तक फ्लोट के ढांचे के साथ इन पेंटिंग्स को लगाकर इसे मुकम्मल करेंगे। फ्लोट की नकाब कशाई 1 अगस्त से शुरू होने वाले फेस्टिवल में की जाएगी।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जौहरी मुआयनों के हवाले से अमरीका और ईरान में इख्तलाफात बरकरार हैं। वाशिंगटन का कहना है कि तेहरान ने जौहरी मुआयनाकारों को कबूल करने पर इतफाक़ किया है, ताहम ईरानी हुकाम का इसरार है कि ऐसा कोई मंसूबा वजूद नहीं रखता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कायम हैं कि ईरानी कुली और मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हो चुके हैं। और बैन अलाक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का कहना है कि वो अपनाए हुर्मुज़ के खित्ते में अब तक फंसे हुए 11,000 से ज़ायद जहाज़रानों के इनखिला के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर रही है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए आप जब चाहें हमारा पेज विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस है NHK.JP/Urdu।

0: お蕎麦3つお願いします。
1: はい。
0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
5: जापानी खातून सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर देती है।
0: ओ सोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
4: तीन सोबा दीजिए।
5: वेट्रेस जवाब देती है,
1: हाय।
4: जी बेहतर।
5: खातून मियां से पूछती है,
0: निहों ए वा कांको देसु का?
4: आप सैयाहत के लिए जापान आई हैं?
5: मियां जवाब देती है,
1: वाताशी वा शशिनका दे निहों नो कोतो ओ काइगाई नी शोकाई शिते इमासु।
4: मैं फोटोग्राफर हूँ और जापान को बाहर मुतारिफ करवा रही हूँ।
1: それで日本を旅行しています。
4: इसलिए मैं जापान भर में सफर कर रही हूं।
5: खातून का शौहर कहता है,
2: それは素晴らしいね。
4: ये तो बहुत शानदार बात है।
5: इनकी गुफ्तगू के दौरान बावर्ची सोबा तैयार कर रहा था। जैसे ही सोबा तैयार हुए, वेटर्स उन्हें मेज पर लाई और कहा,
1: お待たせしました。
4: इंतजार के लिए माजरत, ये लीजिए।
5: सफर के दौरान मिलने वाले लोगों से गुफ्तगू करना वाकई दिलचस्प होता है।
4: बिल्कुल, और आज के मकालमे को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने बारे में बताया जा सकता है। इस तरह गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
5: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं जापान का सफर कर रहा हूँ। अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं।
4: निहोन के मायने तो आपको याद ही होंगे जापान, और ryokoshiteimasu यानी सफर कर रहा हूँ। आज का नुक्ता ryokoshiteimasu यानी सफर कर रहा हूँ, हालिया जारी काम के बारे में बताने के लिए फेल की ते शक्ल के बाद इमस लगाया जाएगा। ryokoshuru यानी सफर करना की ते शक्ल है ryokoshite, इसके बाद इमस लगाने से ये बनेगा ryokoshiteimasu।
5: तो सामिन सुनिए और दोहराइए। आज के मकालमे का एक जुमला निहोन नो कोतो खाई गई नी शोकाशिटेमासु, यानी मैं जापान को बैरून मुल्क मुतारिफ करवा रही हूँ, भी इसी अंदाज का जुमला है, जिसके जरिए अपनी हालिया सरगर्मियों के बारे में बताया जा सकता है।
4: जी हाँ, शोकाशिटेमासु यानी मुतारिफ करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ। दरअसल फेल शोकाशुरु यानी मुतारिफ करवाना की ते शक्ल शोकाशिते के बाद इमास लगाकर बनाया गया है। अब जापान में अपनी सरगर्मियों के बारे में बताने वाला एक मकालमा सुनिए।
6: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
4: और अब मकालमे की तशरीह।
6: ryokou desu ka?
5: क्या आप सफर कर रहे हैं?
4: ryokou एक इस्म है जिसके मायने है सैयाहती या तफरीही सफर।
6: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
5: जी हाँ, इधर उधर सफर कर रहा हूँ।
4: Hai यानी जी हाँ, और अच्छी कोची के मायने है इधर उधर।
5: तो सामिन सुनिए और दोहराइए। सामिन अब मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
7: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu. Hai.あちこち旅行しています。
4: आप जापान में मजीद जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताने की मशक कीजिए। मसलन आप जापानी जबान सीख रहे हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे? जापानी जबान को कहते हैं
7: निहोंगो। निहोंगो
4: सीखना की जापानी है बेंक्यो सुरु, और उसकी ते शक्ल है
7: बेंक्यो शिते। बेंक्यो शिते
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
4: और अगर आप काम कर रहे हों तो कैसे बताएंगे? काम को जापानी में कहते हैं
7: 仕事。仕事。
4: करना की जापानी है सुरु, और इसकी ते शक्ल है
7: して。して。
4: तो सामीन कोशिश करें।
7: 仕事をしています。仕事をしています。
4: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम गिनती का एक खुसूसी तरीका बता रहे हैं।
5: जापान में कोई चीज ऑर्डर करते वक्त आम गिनती